0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713900392।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
4: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: पंदा
1: 0331252578 6।
0: जी हाँ, बुड़ी 381 25 25 786।
1: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसानों

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: लिंकन और ज़रिए पानी खंडित वधाए छी सिंध में पानी जो बोरान संगीन थी वयो पंजाब तोनसा पंज नंद लिंकन और ज़रिए 7088 क्यूसिक ए सीजी लिंकन और ज़रिए 5852 क्यूसिक पानी खण लगो मामले ते सिंध के आपाशी खाते की खामोशी भी सवालिया निशान बनल गुजरियल एक हफ्ते का मुसलसल पानी खड़ने सबब सिंध के बैराजेज ए वाहन में पानी की शदीद कोट पैदा थी वही सिंध के आबादगार ए पानी माहिर खदशो जाहिर किया है तो पंजाब पारा बिना इजाजत लिंक कैनाल खोलने से सिंध की जरिए जमीन के सख्त नुकसान पहुंची रो है पीने के पानी जो बोहरान भी वही रो है सिंध हुकूमत नोटिस वे

0: गिरफ्तार करे वरतो। पिनकी दौरान जांच दौरान मनशियात बाबत समूरी डेती लेती ऑनलाइन करण जो भी एतराफ कयो। अनमोल उर्फ पिनकी पुलिस के जांच दौरान बुधायो आहे त संदस गैंग कराची में माहवार 2 करोड़ का वधीक जी मनशियात विक्रो कंदी हुई। इदारन जे ऑफिसरन एहलकारन के भी करोड़े रूपया डिना वेंदा हुआ। अनमोल उर्फ पिंकी जांच दौरान पैसा वठंदड़ ऑफिसरन जा नाला भी बुधाए छड़िया। पुलिस समेत बेन इदारन जा ऑफिसर एहलकार भी फहरिस्त में शामिल।
1: सिंध हाई कोर्ट SP SC 2024 की गडियल चटाभेटी इम्तिहान के नतीजा मुअत्तल कर छड़िया। साल 2024 जो समूरो रिकॉर्ड सील कर रिपोर्ट पेश करने जो भी हुक्म। सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ए कंट्रोलर के 21 मई ते जाती हैसियत में पेश थियण की हिदायत। इम्तिहानी जवाबन वारियूं कापियूं भी तहवील में वठण जो हुक्म। जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसल जस्टिस निसार अहमद बमरो ते बदल आइनी बेच मुख्तलिफ उम्मीदवारों की दरख्वास्तन ते बुधणी कई। अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के साल 2024 के इम्तिहान जो समूरो रिकॉर्ड सील कर रिपोर्ट पेश कई वे। केस की बुधणी 21 मई ते मुलतवी।
2: ये है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सपोर्ट की है और वो भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सपोर्ट मेरे हदायात के मुताबिक 18th अमेंडमेंट के बाद आपको पता है खासतौर पर फाइनेंशियल बिल पे और आईनी तरमीम के बिल पे पार्टी के जो क्यादत है पार्टी के जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उनको आईन ने बहुत इख्तियार दिया। मेरे इजाजत के बजाय मेरे वोट के बजाय मेरे
0: पीपल्स पार्टी की मदद का सवाल आईनी तरमीम में बजट पास नहीं थी सके। 28 तरमीम बाबत हुकूमत अया तई राबो ना क्यों सुभाने की खबर ना फिलहाल तबसरो नो कर KTN न्यूज के रिपोर्टर असद शर के सवाल जो जवाब डींदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है तो को भी पार्लियामेंटेरियन पार्टी सरबराह वोट नो कर सके इन हवाले से घणो बाख्तियार किया है। पार्लियामेंटेरियन की रुकनियत भी खत्म थी सके थी। सूबन के तरमीमन जरिए हक ए आला अदालतन में नुमाइंदगी दियारी है। दुनिया के अमन लाए वजीर आजम ए फील्ड मार्शल घड़ी मेहनत कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत ते तनकीद करण मुनासिब ना है। मुल्क मुश्किल के मुंह डेई रो है। बजट में भी अवाम लाए मुश्किल थी सन थी हुकूमत सूरत हाल के दिसंदे फैसला कंदी।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। किसानों के

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
1: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
0: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
1: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
0: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूरा

0: मेमण दिमागी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा।
1: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरोफिजिशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
0: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
4: क्या वहाँ पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तो पोए GFM 90.4 मात के एड़ो ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03132525786
2: जी हा 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

0: METH Network, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
6: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
7: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां खिदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
7: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
6: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
7: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
6: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
6: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: किसानों के आलमी दिन पर होना की जानिब से किसान

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
1: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0371800-3920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
1: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
0: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
1: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
0: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
1: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
0: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़्द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डीं जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वञे।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: ईरान जो 90% दिफाई सिस्टम तबाह करे छॾियो. हाणे वटि हमले जी सलाहियत बि न रही आहे. अमेरिकी सेंट्रल कमांड जे सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर जो बयान. अमेरिकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स मूजिबि अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारनि जी ऊची रिपोर्ट मां ज़ाहिर थिए थो त ईरान जी मिज़ाइल सलाहियत अञा बि बरक़रार आहे.

सिंध हुकूमत जो आबादगारनि खे भाण ते ॾिनल सब्सिडी वारा पैसा वापसि वठण जो फ़ैसिलो। सूबाई हुकूमत समूरनि डीसीज़ खे ख़त लिखी कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खां पैसा वापसि वठण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सिंध हुकूमत चयो आहे त डीएफपी जी रक़म वठी कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खे 5 सालनि ताईं का बि सब्सिडी न ॾिनी वेंदी। कुझु आबादगारनि खे एकड़ ते 14,000 रुपया हासिल करण बावजूद कणक जी पोखी न कई। हुकूमत रजिस्टर्ड आबादगारनि खे फी एकड़ ते भाण जे बद में 14,000 रुपया ॾिना हुआ।

सरकारी मुलाज़िमनि जे असासनि जी निगरानी एआई ज़रिए थींदी। जांच जो इख़्तियार एफबीआर वटि हूंदो। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जे इख़्तियारनि जी नाणे ऐं टैक्स वसूली बाबति सेनेट जी स्टैंडिंग कमेटीअ खे ब्रीफिंग ॾिनी वई त एआई ते ॿधल सरकारी निज़ाम आफ़िसर जी दौलत असासनि में गैर मामूली वाधि ते लाॻापियल इख़्तियारनि खे अलर्ट जारी कंदो। डिसम्बर 2026 खां 17 खां 22 ग्रेड जे आफ़िसर जा असासा डिजिटल डिक्लेरेशन सिस्टम ज़रिए अवाम आरो हूंदा। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिनकीअ जी निशानदेही ते अबुल हसन इस्फानी रोड ते पुलिस जो फ्लैट ते छापो। वॾी मिक़दार में मनशियात हथ सचल थाणे ते केस बि दाख़िल कयो वियो। पुलिस मूजिबि पिनकीअ जी निशानदेही ते बंदि पयल फ्लैट ते छापो हयो वियो, जितां मनशियात हथ आई। जांच दौरान पिनकीअ पारां बीमारी जी शिकायत ते संदसि मेडिकल चेकअप बि करायो वियो। इस्पताल ज़रियनि मूजिबि पिनकीअ खे गुर्दे ऐं मादे जी शिकायत ते इस्पताल आंदो वियो हो, जिते संदसि टेस्टूं कयूं वयूं।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे मा पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
2: खुशखबरी खुशखबरी साफ ए शिफा पानी सेहतमंद जिंदगी जी जमानत
3: अवां जे पेंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहयो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी जी बोतल
3: 6 लीटर पानी जी बोतल ए ब्यू पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रहयो आहे
2: उनखा इलावा असां वट रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अगते मौजूद आहे
3: अवां जे एतमाद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं बिन तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वट मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
2: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिंमें
3: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
3: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
2: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786
2: जी हा 2315-2576
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़
0: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डीए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वञे।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
2: किसानों के आलमी दिन पर

0: मेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
3: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जी टूं लॻण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक

0: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713900392।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिंमें
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
3: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

वफ़ाक़ी हुकूमत IMF खे नए माली साल जे बजट में बिजली ऐं गैस महांगी करण जी ख़ातिरी कराए छॾी। ज़रियनि जो चवणु आहे त हुकूमत बजट बाबति IMF सां ॻाल्हियूं करे रही आहे। IMF खे तवानाई शोबे में सुधारनि बाबति ब्रीफिंग ऐं नए माली साल बाबति हदफ़नि खां आगाह कयो वियो आहे। IMF खे ख़ातिरी कराई वई आहे त बिजली महफ़ूज़ करार ॾिनल वाहिपेदारनि खां सवाइ ॿियनि जे लाइ बिजली ऐं गैस महांगी कई वेंदी। क़ीमतुनि जो भार वाहिपेदारनि ते मुंतक़िल कयो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां चीन जे 11 रुकनी कारोबारी वफ़द जी मुलाक़ात। वज़ीर आज़म पारां चीन ऐं पाकिस्तान में कारोबार वधण ते इत्मिनान जो इज़हार। शहबाज़ शरीफ चयो त सदर शी जी क़यादत में चीन शानदार तरक़ी कई आहे। ॿिन्ही मुल्कनि में कारोबार जी वाधि सां आवाम खे फ़ाइदो थींदो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां विच ओभर बाबति अमेरिका जे नायब परॾेह वज़ीर पॉल कपूर जी मुलाक़ात। पाक अमेरिका लाॻापनि ऐं विच ओभर जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। मोहसिन नक़वी चयो त सदर ट्रंप जे दौर में पाक अमेरिका लाॻापा वधीक मज़बूत थिया आहिनि। विच ओभर में जारी तकरार जे जल्द पुरअमन हल जे लाइ बि पुरउमीद आहियूं। अमेरिकी नायब परॾेह वज़ीर पारां विच ओभर में अमन जे क़याम जे लाइ पाकिस्तानी कोशिशुनि जी साराह। मुलाक़ात दौरान अमेरिकी सफ़ीर ऐं ॿिया बि मौजूद हुआ। सिंध हुकूमत जो आबादगारनि खे भाण ते ॾिनल सब्सिडी वारा पैसा वापसि वठण जो फ़ैसिलो। सूबे हुकूमत समूरनि डीसीस खे ख़त लिखी कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खां पैसा वापसि वठण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सिंध हुकूमत चयो आहे त DAP जी रक़म वठी कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खे 5 सालनि ताईं का बि सब्सिडी न ॾिनी वेंदी। कुझु आबादगारनि फी एकड़ ते 14,000 रुपया हासिल करण बावजूद कणक जी पोखी न कई। हुकूमत रजिस्टर्ड आबादगारनि खे फी एकड़ ते भाण जे मद में 14,000 रुपया ॾिना हुआ।

0: टंगवाणी भरसां नसीर शाख ते पुराणी पुल ढाहिण दौरान किरी पई, टे भरे ते दॿिजी फौत। ॻोठ शाहज़ैन ख़ान बेजाराणी में नसीर शाख जी पुराणी पुल खे मज़दूर ढाहे रहिया हुआ त धमाके सां किरी पई। पुल ते कम कंदड़ टई मज़दूर दॿिजी फौत थिया। इलाइक़े वासियुनि हेवी मशीनरी जी मदद सां टिनी मज़दूरनि जा लाश ॿाहिरि कढिया। फोती परतनि जी सुञाणप अबूबकर निंदवाणी, इमाम बख़्श ख़ान निंदवाणी ऐं धणी बख़्श जाफ़री जे नाले सां कई वई। इलाइक़े में सोग छायल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
4: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
5: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर माटली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713903920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
6: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
5: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
6: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
5: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
6: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
5: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
0: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GA FM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पे

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे.
4: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
5: किसानों के

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर इत्माद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
1: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
0: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
1: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
0: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
1: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
0: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
2: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसानों को

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिन जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GA FM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
1: आशना अपनी हकीकत से हो ऐ दहकां जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रह रो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत.
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे. सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे.
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे.
6: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो. असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे. वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920.
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली.
5: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
6: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
5: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
6: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
5: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
6: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद.
5: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली.

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
1: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
0: खुशखबरी खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं में
1: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा
0: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
1: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
0: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
1: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
0: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: के हो तो आवाज़ भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: कर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवांजे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
5: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाड़ी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर माखली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक 20 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे इत्माद खे कायम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
3: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
7: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
6: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
7: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
6: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
6: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर माकली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अघ ते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे इत्माद खे कायम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
5: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद

0: न्यूरो फिजिशियन और आचार्य डी मंझंद ब वगे का टे वगे ताई मरीजन जो मोइनू कंदा।
1: डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
4: सुनवारा हुस्न पाजो करे जाहिर नहीं दो कर करे जाहिर नहीं दो कर लिखण में थे न कोताही लिखण में थे न कोताही लिखण में थे न

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे जीए
3: में है और उनका असरात पख्तूनख्वा बलोचिस्तान और फिर बाकी मुल्क पे होता है. वो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इनिशिएटिव, मगर मैं आपके ये एफर्ट को जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा. चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ जो आप काम कर रहे हैं वो भी बहुत इम्प्रेसिव हैं. हमने आप कह रहे थे कि आपकी जो शराय अमवात है वो इस वक्त ये मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उनका शराय अमवात पूरी पाकिस्तान में आपका शराय अमवात सबसे ज्यादा है. मगर इससे पहले जिस तेजी से सबसे द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका नहीं था, सूबा सिंध का होता था. और आपको याद होगा कि थरपारकर में जब कहत का सूरत हाल बनता था तो वो शराय अमवात में जो फिगर्स शामिल हो जाते थे वो हमारे लिए एक बहुत क्राइसिस जैसे सूरत हाल था. एंड इट वॉज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान. मुख्तलिफ इंटरवेंशन के बाद, मगर मैं समझता हूं खास तौर पर हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ रहा है, हमने सुबह सिंध में वो शमरायनवाद जो पूरे मुल्क में सबसे आगे था, अब हमारा परफॉर्मेंस बाकी सूबे से बेहतर है इंटरनेशनली आलमी सतह पे. और यही चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने जो आप अब बाकी मुल्क के मुकाबले में सबसे तेजी में आपका जो शराय अमवात है सूबा सिंध का वो कम होते जा रहे हैं. तो मैं बहुत खुश हूं कि आपने अब 8 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बलोचिस्तान में ये चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू किया. और लोरेलाय में, खुजदार में 2 डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो गया है या 4 डिस्ट्रिक्ट में शुरू?
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां. GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
5: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसान

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
1: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
0: तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
5: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786
2: जी हा 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347321230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: आप बताएं सिंगर, दूसरों का सॉन्ग आपका?
1: फौजिया कुमरो का सॉन्ग है, जेके उदारिया मतोला पकिएगा, जमा खास की लिखी शायरी है, बहुत अच्छा सॉन्ग है।
0: ओके, जेके उदारिया मतोला पकिए
1: जी, जेके उदारिया मतोला पकिया,
0: वो मोदे मोदे अच्छी पता है वो पकी मोदे पाची व्यान
1: इंशाल्लाह इन जुमलन में तहां की ये सॉन्ग मिली न इस्ताक भाई
0: मिली वियो, मिली वियो मुखे मिली वियो
1: मिली वियो
0: हां हां जी तरीके चाहे मां त मोदे पाची व्यान वो पकी
1: ये सॉन्ग बुद्धि दिसियो को ता मखे बुदाई जसे जो मोजे पसंदीदा सॉन्ग आहे फौजिया तुमरे जे आवाज में वो केत्र नाइस केत्र सुठो सॉन्ग आहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, फौजिया सुमरो लेजेंड गुलकार आहे असन जी। जी जी
1: जी,
0: फौजिया सुमरो असन जी लेजेंड गुलकार आहे, त यकीनी तौर ते उन जो सॉन्ग त कीन बलंदो।
1: बिल्कुल, मां त ये चंदम त सारा दिन बल्कि पूरी सिंध जी कोयल फनकार आहे।
0: बिल्कुल, पाकिस्तान भर में ऐं दुनिया भर में उनखे ॿुधियो वेंदो आहे, जिते जिते सिंधी समझी वेंदी आहे।
1: बिल्कुल, जिते जिते सिंधी समझी वेंदी आहे ऐं ॻाल्हाई वेंदी आहे उते फौजिया सुमरो खे ॿुधियो वेंदो आहे। ऐं अॼु बि रेडियो पाकिस्तान ते जॾहिं बि सिंधी महकमा या कोई प्रोग्राम हलंदो आहे त हुन में फौजिया सुमरो शामिल हूंदी आहे।
0: एग्ज़ैक्टली,
1: अगरि ॿिए स्टेशन न बि सही पर रेडियो पाकिस्तान मिठी हमेशह फौजिया सुमरो खे पंहिंजे हर प्रोग्राम में शामिल कंदो आहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेजेंड सिंगर आहे असांजी। अच्छा, कंहिंजे नाले डेडिकेट करणु चाहियो था?
1: सलाम सिस्टर मिसिस अली फौजिया फरज़ाना राय सुमरो, और उसके बाद उर्दू सिंधी मिक्स हो गई है।
0: कोई बात नहीं, हमारी शास्त्रिक बन जाती है वो, जो सलाद नहीं होती जिसमें हर चीज शामिल होती है।
1: राय सुमरो, मंताज सुमरो, हाफिज गुलाम अहमद सांबल, लुकमान चाचर, हुसैन बख्शो, फाइन लिखो, बचल चंबानी, नज़ीर मंगीरो, जेके दोस्त ॿुधनि था सभिनी खे इरफान अली थिए पारां थोरा थोरा सलाम।
0: वालेकुम असलाम इरफान, थिए पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। थैंक यू अदा सो मच।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू। बेबी तनम हमारे साथ इरफान थे वो तमाम बुधी रहा हो जी एफ एम एच नेटवर्क। असानी सिंधी भी हलंदी, असानी उर्दू भी हलंदी, असा पंजाबी भी गलायूं था, असा पश्तो भी गलायूं था, असा सम जो आहे बलूची भी गलायूं था। थई छे हाले, थई जो हाले, तमा असा के कॉल कर सको था 03000113488। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम साई, छाला भा प्यारा।
0: हाय मुजा प्यारा भा, केर तो गलाय असा सबनी सा करे, किथा पियो गलाय?
2: अमीर बख्श मंगनार जिलो गोटकी मिस्री गोठ मा।
0: वाह वाह वाह, मिस्री जड़ा मानू असा सबनी सा गोड मौजूद है। अमीर बख्श साहब, गर्मा गर्मी किए था गुजारियो?
2: बस साईं गर्मी ॾाढी आहे, काठियुनि ते भुॻो रेडियो तितरी गॾा, मुंहिंजे भाउ जो प्रोग्राम ॿुधो, वरी जुमो निमाज़ पढ़ी।
0: वाह वाह वाह,
2: वरी काठियुनि जो टाइम थी वियो।
0: हा ज़बरदस्त, वरी काठियूं काठियुनि जे माना काठियूं वॾियूं वॾियूं अथव?
2: हा काठियूं वॾियूं आहिनि, बसि मां खणी वठूं त सही आहे, कमकार त सही आहे घर जो।
0: कमकार त बिल्कुलु ठीकु आहे, बिल्कुलु जनाब, इहा कमकार त जेको आहे करणु खपे, छो त इंसान चौकस रहंदो आहे।
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: अच्छा मुझा प्यारा भा अमीर बख्श, यो बुधायो त अॼुकल्ह जेका खानदान में लड़ायूं थी हणनि, खानदान सेपरेट थी वञनि था, अलॻि थी वञनि था, विढ़नि छो था भाई? इहे कहिड़ी वजह आहिनि जेका विढ़नि था?
2: अॻे असां नंढा हूंदा हुआसीं, बाबा यारा चवंदा बाबा गुज़ारे वियो, अॻे मोहबत जाम हूंदी
0: आहे,
2: आहे बि कोन्हे, बसि माण्हू
0: हा बिल्कुल बिल्कुल, मोहबत खे वधाइण खपे, अपनायत खे वधाइण खपे, अनाऊं ख़तम करणियूं खपनि, कूड़ ख़तम करणो खपे, साड़ ख़तम करणो खपे पाण मां, त इहो मोहबतूं वधंदियूं।
2: बिल्कुल मोहबतूं वधंदियूं, बसि कलाक सां माण्हू हर मन सां तेज़ थी वञे, सिबर जो मन मिठो हूंदो आहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अमीर बख्श भाउ तव्हां मिठा मिठा माण्हू आहियो, इहो ॿुधायो असां हाणे तव्हांखे मिठी मिठी फौजिया सुमरो ॿुधाइण वारा आहियूं, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो?
2: प्यारो दोस्त आला दाद मार, मोहम्मद अली मार, अब्दुल भंगवार बुद्ध बुरो, पठान खान पटके आरो,
0: जी जी,
2: इनाम मार, ओके
0: ओके मार, ओके ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच अमीर बख्श फ्रॉम घोटकी। और जनाब हमारे साथ उन्होंने नाम लिया एक बहुत ही प्यारे से मतलब हमारे लिस्टर है पठान खान पटके वारो, जेको पठान खान पटके वारो असा के बुध ही अथो पर असा के कॉल नथो करे, माना असा के नाराज थी वाला है छो, तो पठान खान पटके वारो जिते भी आए असा उनके याद क्यों था, असा तमाम घना पुराना लिस्टर रहन जी अचन ता असा सबनी सा पांजी गालियो शेयर कन। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
0: जी जनाब, केर असा सबनी सा गद?
3: अस्ताद भाई, इमाम दिनो भमरो साले पट,
0: इमाम दिनो भमरो साले पट का साले पटवाड़ा की हन केड़े हालन में आहेन?
3: सब पा ठीक ठाक, तांगे दुआऊंगा के तो पायर राम के जे समय ते।
0: अच्छा इमाम बख्श साहब, यो बुधायो ता साले पट में भी ई गर्मी पई थी जते जी सखर में पई थी?
3: हा तकरीबन नहीं आए गर्मी आए पर माशाल्लाह सुठो लमला,
0: छो त उते त मुझे ख्याल में वण आइन, वण भी आइन, वाहू भी आइन, आई उते त जाम पानी आ आसे पासे में इए न
3: भाई? यो अज 40 जाने तरह सेंटी डेढ़ पर 52 50 हुंदी आ त को मसलो न हुंदो।
0: ओए वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तां के ई खुश रखे, थदो रखे। यो बुधायो फौजिया सुमरो तो प्ले करण चाहे, कें जे नाले त करण चाहे? जी कंहिं जे नाले करणु चाहियो? चले ठीक है, थैंक यू सो मच इमाम बख्श भमरो साहब। ओके ओके ओके जीतन बस तुम सभी दोस्तों प्ले क्यों था फौजिया सुमरो जेके ओरिया मुतुला पखी इरफान थेबो की फरमाइश है असा अमीर बख्श साहब की फरमाइश है जो असें पे फरमाइश कई है जलूरी अखा खालिक भाई की फरमाइश है तो बुधवाई खोर सारे इंजॉय किया।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसानों

0: हिक ॾींहुं हिन छोकिरे जूं जासूसी माराईंदी असांखे
1: पता लगाता हूं क्या राज है जसूस जसूस
2: असाय पानी साफ ना है तेंजे करी त सब बीमार त अचो असा के पानी ए सफाई बिनन जो ख्याल रखन गुरजे
0: केदो सयानो पुत्रा मुंजो
2: बाबा इयो ही जासूस तांगे बचाइंदो
3: हां साफ पानी महफूज जिंदगी दस्तन खां बचा ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
6: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूदु आहे
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
7: खुशखबरी खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं में
8: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा
7: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
8: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
7: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
8: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
7: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली
9: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
10: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
9: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیماری جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
10: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
9: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
10: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 247-32-41-230
11: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سا چھتو لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
12: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: की आवाज GFM 88 नेटवर्क और जनाब GFM 88 नेटवर्क से आपका अपना शफाक नियाजी आ चुका है आपके साथ वंस अगेन। पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में जनाब मनाया जा रहा है खानदान का आलमी दिन यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। जनाब हम आपको इस हवाले से बात भी कर रहे हैं और इसका थीम है 2026 का कि ये दिन है जनाब खानदान अदम मसावात और बच्चों की फलाह व बहबूद के मरकजी मौजू के तहत मनाया जा रहा है। बिल्कुल जनाब बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में, और इंटरनेशनल फैमिली डे मनाने का मकसद बच्चों के घरों में बेहतर माहौल फराहम करना और ये दिन इस बात को भी तस्लीम करता है दोस्तों कि बच्चों की खुराक और हिफाजत की बुनियादी जिम्मेदारी खानदान पर आयद होती है और ये सब चीजें हमें उनको प्रोवाइड करके देनी होती हैं एनी हाउ, और अपने बच्चों को बेहतर सेहत, बेहतर तालीम और बेहतर तर्ज जिंदगी फराहम करना वालदैन की जिम्मेदारी होती है। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल भाई, खैरियत है?
0: ठीक ठाक मेरे प्यारे से भाई, कौन हमारे साथ?
1: मीरपुर खास से आपका भाई बात कर रहा हूँ।
0: मीरपुर खास से मेरे प्यारे से भाई का नाम भी तो होगा ना कोई?
1: मेरा आपका भाई का नाम अली नवाज बिरोही।
0: अली नवाज बिरोही साहब कैसे हाल चाल है, बहुत अरसे बाद आ पाए यार।
1: यार बहुत, ये तकरीबन 7-8 महीना हुआ आपसे बात नहीं हुई।
0: यार क्या हो गया, कहाँ गुम हो गए थे आप?
1: थोड़ा काम काज के मसले में ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। तो आपका काम काज ठीक जा रहा है?
1: अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, और गर्मा

0: अच्छी बात की मेरे प्यारे भाई अली ब्रोई ने। और अली भाई ये बताइएगा गाना कौन सा सुनना है आपने?
1: यार गाना तो अताउल्ला का सुना होगा ना।
0: अताउल्ला का कौन सा वाला?
1: तेरा पतला है लक तेरा चार मस्तान। यार मैं तो नियाजियों का फैन हूँ ना।
0: अरे मैं सद के जाऊँ मेरे प्यारे से भाई, कौन सा वाला गाना का? नक पतला तेरा
1: चीर गई अख तेरा पतला है लक तेरा चाल मस्तान।
0: चीर गई अख तेरा पतला है लक
1: पतला
0: ये वाला गाना आपका फरमाइशी गाना
1: मेरे गीता भी रानी सलाम माने जवानी।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। तो संग मैंने सराय की भी आंधी है।
1: बिल्कुल मैं तो यार अताउल्ला का बड़ा फैन हूँ यार, इमरान अच्छा, खान का।
0: थोड़ा गाना गुनगुना के बताओ मुझे आप।
1: तेरा पतला ए लक तेरा जाल मस्तानी मेरे जी रानी
0: शाला
1: माने जवानी।
0: वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अली भाई आपने तो वाकई दिल जीत लिया, थैंक यू सो मच। और ये किसके नाम करना चाहेंगे?
1: यार मैं तो जितने मेरा भाइयों सुन रहे ना आपके स्पेशल
0: इश्ताक
1: भाई के नाम।
0: थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अली भाई, और हर जुमे के जुमे हमारे साथ आया करें।
1: थैंक यू सो मच।
0: हमारे साथ जनाब मीर खास से अली ब्रोही भाई, और अली ब्रोही बने कहा कि अताउल्ला का सॉन्ग चलाएं। तो बिल्कुल जनाब आपकी फरमाइश सर आंखों पर, आपका अपना अशफाक आपके साथ मौजूद है। 5:41 हुआ चाहते हैं और थोड़ी देर में 42 भी हो जाएंगे, 43 भी हो जाएंगे, इसी तरह टाइम गुजरता जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि गुजरते टाइम के साथ आपके साथ हमारा कनेक्शन और ज्यादा मजबूत होता जाए, आपके साथ हमारा कनेक्शन और ज्यादा मजेदार होता जाए। तो जनाब देर किस बात की है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488। जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है वहां वहां तक के तमाम दोस्तों को हम ये कहना चाहते हैं जनाब जल्दी से आ जाइए, अपने मैसेजेस भी हमारे साथ शेयर कीजिए जनाब, और हमारे साथ बातें शातें कीजिए और अपने मैसेजेस दीजिए जनाब, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जब आएं तो बड़े धड़ल्ले के साथ आएं, बड़े मजे के साथ आएं। तो आप हमारे साथ यूं ही रहें और इंजॉय करते रहें हमारे शो को जिसका नाम है आई लव यू ऑल। और जनाब हमारा नंबर वन सेकेंड आपकी समातों की नजर करता चला, 03000113488 हमारा नंबर है, और हम आपके साथ हैं शाम के 7 बजे तक। आज इंटरनेशनल फैमिलीज डे मनाया जा रहा है, खानदान और वालदैन और दीगर देखभाल करने वाले बच्चों की बहबूद और उनकी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं जनाब। वो बच्चों की पहचान, उनको पहचान, मोहब्बत, देखभाल, रिस्क और तहफ्फुज फराहम करते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है और वो बदरजा अतम इस पे पूरा उतर भी रहे होते हैं। कौमी समाजी पॉलिसियों और समाजी सरमायाकारी के पैकेजों के एक अहम हिस्से के तौर पर खानदान और वालदैन के लिए तआवुन, जिसका मकसद गुरबत को कम करना, अदम मसावात को कम करना और मजबूत फलाह बहबूद को फरोग देना है, बच्चों के हकूक के कन्वेंशन के रूह के मुताबिक दिया जा रहा है। बिल्कुल जनाब, और बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना हम सबकी अवलीन जिम्मेदारी होती है, उनको बेसिक सहूलतें देना हमारी जिम्मेदारी होती है और ये हम सबको पूरी करनी चाहिए। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
2: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: के रसा सबनी सा गरदा
2: शामीर अली चाचर पनवाकिल का गला जो सुन।
0: शामीर चाचर फ्रॉम पनवाकिल, केरा हाल चाल है शामीर भाव?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जैसा लगा कहनी मार के जी मेहरबानी लगी तो यार तां पांच हाल बधायो तां
0: माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है माशाल्लाह। तमा भारन जी दुआओं सा सबनी सा गद मौजूद आहिन, यो बधायो छा कंदा शामीर भाव?
2: पांजी जमीन आए, जमीन जो कमकार कंदा हो।
0: अच्छा माशाल्लाह, त की हले तो ता जो कमकार?
2: कमकार तमाम बेहतर है, सुठो हले थी।
0: इन दफा तमा जमीन ते छा माना कोखियो आप?
2: पोखियल पहिरियां त कणक हुई हुआ, कणक खणी आयासीं, हाणे थोरो कमंद पोखियल आयासीं।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। इहो ॿुधायो त तव्हांखे असांजो शो कीअं लॻंदो आहे, GFM88 नेटवर्क जा सभु शो कीअं लॻंदा आहिनि?
2: तमाम बेहतर ऐं सुठो ऐं लाजवाब हूंदा आहिनि जेको शो हूंदो आहे।
0: हा जबरदस्त जबरदस्त। इहो ॿुधायो हाणे मां अताउल्ला जो गानो हाणे फरमाइश आई आहे अली ब्रोही भाई जी, त उहो गानो प्ले कयो, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो?
2: हा असांजे पीरी प्यारो भाउ लुकमान चाचर आहे, बाबू अदील अबड़ो साहिब आहे, अब्दुला बंगवार आहे, अमदाद अली शाह आहे, जेके पीरी प्यारा भाइर ॿुधनि पिया ऐं असांजी भेनरूं ॿुधनि पियूं, चानीअ चाचर जा सिक भरिया इलाही सारा खोर सारो सभिनि खे सलाम।
0: वालेकुम असलाम चाचर भाउ, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो पनवाकिल वारा भाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जनाब पनवाकिल से हमारे साथ आए, मीर खास से हमारे साथ आए, और जनाब हमारे साथ हर जगह से हमारे साथ तमाम लिसनर्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेते हैं शो की एक और कॉल। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: केरदा सा सबनी सा गड़

0: रुस्तम भा केड़ा हाल चाल तो बताने गोठ वाला सब खैर में आनम
1: शुक्र हाल आया शान
0: रुस्तम छा कंदो आ भा
1: बनी बारे जो कम कंदा
0: हूं माशाल्लाह माशाल्लाह की हले तो तां जो बनी बारे जो कम
1: तमाम सुठो पे हले माशाल्लाह
0: अच्छा त बनी बारे जो कम कदी खा वठी करी ताई कंदा आयो मना उस समय कंदा आयो उस गर्मी हा इलाही हा गर्मी हा यहाँ है पेट लाता मानू गर्मी में कम कंदो आ भला हाने छा क्यों ये ना यार कोई दुआ बुआ घुरो तो कोई बारिश वारिश थे कोई मौसम चेंज थी वने जी
1: गर्मी हो गया सर्दी कम तक करनो
0: कम तक करनो आ है ना काडे विंदा से भला दुआ कयो झोलियों भरे भरे ता साईं मी थोड़ो बसाए रहमत जो
1: जी जी बगड़ा कम बरसात
0: तो जी मौसम सफा चेंज थी वने
1: जी जी
0: हां अच्छा रुस्तम भाई यो बतायो गानो हलाया थो के जे नाले तक करना चाहो
1: हाँ असाजा दोस्त पे आबु जन दिलीप कुमार मेघवाल मलिक मोहम्मद बलोच मुनीर अहमद सियाल कुर्बान अली खास केली जोन कुमार कोहली
0: सही
1: असाज फौजिया सुमर के नगमो थी सके तो बुधाए जो
0: फौजिया सुमर हाने हाने तमा प्ले कयो आ
1: अच्छा पो मा न बुधी सके तो मा हनर रे जो आर थियो
0: आ अच्छा अच्छा कोई गाल नहीं कोई गाल नहीं मा ता के अतावला जो गानो बुधाए तो थैंक यू अदा परस्तम भाई पांजो खास ख्याल रखजो
1: मेहरबान
0: ओके हमारे साथ रुस्तम भाई के लिए हम गाना प्ले करेंगे और ब्रेक के बाद अतावला प्ले करते हैं आप इस वक्त ब्रेक को एंजॉय कीजिए
2: मोरू नौशहरो मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह पर
3: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज
4: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसान

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: जनों, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से हम आपके और आप हमारे साथ मौजूद हैं। चीर भी आंख तेरी, पतला इलाक तेरा, शाला माने जवानी, और बहुत प्यारा सा गाना हमने आपकी समातों की नजर किया। अली मोहम्मद रोही की फरमाइश पर लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुझे प्यारा भा, केर प्या गलायो के था प्या गलायो। हाँ जी जी, हाँ जी जी, तां जी प्यारन भाइन जी दुआओं असा सबनी से गड़े लड़काने वाला की आन। मुझे यार लड़काना में तमाम घणी गर्मी पई थी।
1: लाड़काना में बाबर साहब ॾाढी गर्मी आहे, राति थधी आहे। बाकी लाड़काना वारा तो यादि करे करे हणे।
0: अच्छा मां काल हाणे खई आहियां बाबा, तव्हांजी शिकायत दूर थी वई हूंदी यकीन तौर पे।
1: बाबर शेख बि छॾे वियो।
0: बाबर शेख छॾी न वियो थी बाबा, काॾे वियो
1: चाहियो।
0: देखते हैं जनाब ये गाना और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, हम अपने कॉलर को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो
0: हेलो जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल्ला सोलंगी साहब, केड़ा हाल चाल अव हबीबुल्ला भा? हेलो जी जी, आवाज अचे थी?
2: खुश आओ?
0: ठीक ठाक हबीबुल्ला भा, छा कंदा आयो? ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ जबरदस्त। तुम कम कार किए तो हले प्रोग्राम तक लग सफा मजे में, सफा मजे में। तक असो प्रोग्राम कि लग
2: सफा भलो प्रोग्राम सही भलो हली रहा।
0: अच्छा हबीबुल्ला भा,
2: माता प्रोग्राम में थोड़ो वधाईंदो त भलो थींदो।
0: हां इंशाल्लाह इंशाल्लाह वधाईंदासीं। हबीबुल्ला भा, यो बुधायो, सरमद सिंधी तो गानो हलाया, कंहिंजे नाले सां करण चाहियो?
2: जमील अहमद सोलंगी, सफीर अहमद सोलंगी, अब्दुल गनी सोलंगी, मोहम्मद रफीक सोलंगी।
0: अच्छा ठीक है, ठीक
2: है, बुधांदा उन्हें फरमाश जो कोई बुधांदा।
0: ठीक है मुझा प्यारा भा हबीबुल्ला, पांजो खास ख्याल रखो, नेक्स्ट टाइम भी असांखे जरूर कॉल कजो। थैंक यू। हमारे साथ है जनाब हबीबुल्ला भाई, और हबीबुल्ला भाई की फरमाइश भी हम प्ले करेंगे और आसिफ की फरमाइश भी हम प्ले करेंगे। अब जनाब क्या करते हैं कि हम चलाते हैं एक जबरदस्त सा गाना। हम तो कॉल ले चुके हैं और चले जनाब एक और कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद गाना चलाएंगे, ठीक है ना? जैसे आप कुछ जहाँ आप पूछ लेते हैं, रोकिए एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: वहीद वफा जतोई, केड़ा हाल चाल तब? ठीक ठाक आयो?
3: शुक्रा शुक्रा, बस तांजे आवाज अंदाज़ो के शुक्रा, जन हफ्ते जो वडो इंतजार हुंदा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू
3: सो मच। आज मैं एकरी सलाह जा नाराज न थी जो छंछर आचर कयो, टे दिन त कयो ने बाबा।
0: हां टे दिन कयो,
3: बिल्कुल कयो यार, ब्लैक घंटे में छा किदो आसा से ता आचर ने किदा कयो, मिसाल सा खुशी परेशानी खत्म था कयो।
0: अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर इन गाल ते ताजी अमल कंदा से, ट्रेड या सा जरूर कंदा से ता शो।
3: अच्छा आचर,
0: ओके मिठा भा, ओके ओके। अच्छा भाई भाई
3: जी जी,
0: बेओ घर में गर्मा गर्मी की तले
3: यार सचपची दा, आज वरी ना के गर्मी घट पे जे ना, चार दिन हुई बिल्कुल हुई भाई, आज जन कुछ मौसम सही।
0: हां कुछ मौसम वाकई सही है। यो बुझायो शर्म सिंधी जो गानो तो हलाया, हल बो हाने लड़े लड़े तो कहंदे नारा करना चाहियो?
3: ई आस बच्चा दे ते काफे भलो जग माता, हल बो लड़े लड़े
0: जी
3: छडे छडे कर ई आस बच्चा दे रे थोड़ा सारा सलाम।
0: वालेकुम सलाम।
3: हां मैं ध्यान दिया रे फिर दे कोई
0: जी,
3: मैं जो भाव आ
0: बिल्कुल
3: यार, फेसबुक अब्दुल वहीद सिंधी में नालो आ।
0: अच्छा वफा अब्दुल वहीद जतोई सिंधी में नालो था, सर्च कियो फेसबुक पे,
3: सर्च करे मां सा मैसेजर ते रातो त करे।
0: ओके ओके ओके, तां जो पैगाम पुजी वो
3: आपे मजे भाग आ जाई रे मन जतोई, मजे भाग आया रे मन जतोई, आशा मिल चाटे नार कारे खाना खाऊं पानी खाऊं اشتاق شيخ صاحب خود سلام سلام آباد جت بدن تا وفا عبد الوهید جت پر سلام سلام
0: وعلیکم السلام تھینک یو وفا وحید صاحب تھینک یو ہمارے ساتھ وفا وحید اور اب گانا پلے کرتے ہیں جناب دیر نہیں کرتے اس گانے کو سنیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ہم واپس آتے ہیں جناب اس بریک کے بعد

0: एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: छो बीजिंग में वापसी के जहाज में साफ हथियार देण की मंजूरी ना डिनी थी सके तो मंजूरी दिया या न भी दिया। चीन अमेरिका का अरबन रूपये के सोयाबीन खरीद कंदो जो फायदो अमरीकी हारियन के थी। सदर ट्रंप गालबोल दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ भी कई। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका से गालियों नाकाम नाइन थी। रुगो मुश्किल जो शिकार आन जंग की शुरुआत भी ईरान न कई रुगो पैंजो दिफा कयो जंग बंदी बरकरार रखने की कोशिश कर रहा हूं। अबना हुर्मुस में रंडकुन जो जिम्मेवार भी ईरान ना है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ईरानी पड़ी वजीर अब्बास राखची है तो ईरान कें भी किस्म जो दबाव जो हमलो बर्दाश्त न कंदो। ईरान की कें भी मसले जो हल फौजी ना है। गालियन में भी रुगो एतमाद की खोट है अमरीका ते भरोसो ना है। ताकत जो इस्तेमाल नतीजा न डी ईरान के एटमी प्रोग्राम समेत समूरन तकरार जो हल मुशावरत से निकरण घुर्जे मसले जो हल तकड़ो हल अमरीका ईरान ए बेन मुल्क के मफाद में है। चीनी पढ़ी वजारत है तकरार के निबेरे लाए गालियन ए राबतन वारो सिलसिलो भी जल्द बहाल थियण घुर्जे। ईरान जंग शुरू ही न थियण घुर्जे हा जंग जो जारी रहण कें भी मफाद में न हों। चीन सदाई गालियन ए सिफातकारी के ही हथी डी है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बलोचिस्तान के 11 तरक्याती मनसूबन जो इफ्तिताह कर छो। बिलावल भुट्टो जरदारी है पीपल्स पार्टी सदाई अवाम दोस्त सियासत करण से गड मनसूबा डिना मुल्क में अमीर तोड़े गरीब लाए सेहत जो एक निजाम होजन घुर्जे। खिते समय दुनिया में मुश्किल सबब पाकिस्तान में भी परेशानी है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी जा सिंध हुकूमत के संगीन इल्जाम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो नालो तब्दील करण जो मुतालबो अली खुर्शीदी चयो त सिंध के हर खाते में करप्शन है को भी कम पैसन का सिवा न थी रो है। असिस्टेंट कमिश्नर भी मुकररी लाए 3-7 करोड़ ताई दे तो सोलर प्रोजेक्ट में वही करप्शन थी अवाम के फुरियो वो अरबे रूपये की कणक कुआ खाई वजन था। वजीर चवन था चोरी ना थी। सिंधु दरिया से तामीर थन्दड़ कश्मोर कंदकोट उल्टाण दौरान रही रही है। कराची जो अमन डिसो घरू वजीर के तमगा देना पा वन। सिंध पब्लिक सर्विस जो कम रुगो पैसा वी नौकरी दियण रह है। मखसूस साहिब जो पुट पास सिंध जो अवाम फेल थी रो है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जा अमलदार सरेआम रिश्वत वी रहा सिंध के वसील के खाईदड़ खूहन के पकड़ बदर बचा पो वे। सिंध हुकूमत जो कुकेन क्वीन पिंकी वाले केस के मिसाल बढ़ाने जो ऐलान। सिंध असेंबली में गालाइंदे सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद चो तो मनशियात रुगो सिंध न समूरी दुनिया जो मसलो है। सिंध के मनशियात का पाक कयो वेंदो। असेंबली मेंबर जी मनशियात टेस्ट कराइण ते भी को एतराज ना है। अपोजिशन लीडर मामले ते सियासत करे रो है। पिंकी की फहरिस्त में शोबे जहा सितारा भी शामिल आन। घरू वजीर जयाल अंजार चयो तो सिंध पुलिस वफाकी इदारे से गड़ी पिंकी के गिरफ्तार कयो। केस ते जांच हलंदड़ है मामले ते न गाल वे जांच बाद असेंबली इजाजत दिनी त नाला भी जाहिर कया वेंदा। पिंकी केस के मिसाल बणायो वेंदो। कुकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की निशानदेही अबुल हसन इस्पानी रोड से पुलिस जो फ्लैट से छापो वही मकदार में मनशियात हथ सचल थाने ते केस भी दाखिल कयो वियो। पुलिस मूजिब पिंकी की निशानदेही बंद पियल फ्लैट से छापो हयो वियो जिता मनशियात हथ आई। जांच दौरान पिंकी पारा बीमारी की शिकायत से संदस मेडिकल चेकअप भी कराया वियो। अस्पताल जरिए मूजिब पिंकी के गुटे ए मादे की शिकायत से अस्पताल आंदो वो हो जिते संदस टेस्टू कई हुई। कराची पुलिस कुकेन क्वीन पिंकी के नव केसन में गिरफ्तारी जाहिर कर छी। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान है पिंकी से गड कम कदड़न जो पतो लगाए छो है। पिंकी जा राइडर्स भी पंजाब का इंदा हुआ कम करे वापस हलिया वेंदा हुआ। लाहौर जो 20 औरतू भी इन गैंग जो हिस्सो आन। कराची में पकड़ने के खौफ सबब पिंकी लाहौर मुंतकिल थी वही हुई। पिंकी वटा मिलियल मोबाइल नंबर घणी कदर कराची का बाहर जहां।
0: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: سندھ کا ہر چپا ہر گوشا
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سے جڑا.
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
4: کسانوں کے عالمی دن پر سونا کی جانب سے کسان

0: केरु शौक हो न तोखे मुझे रो पाए तैयार थियण जो
1: तू आज भी हसी
0: थोरो पाए तो देखार
2: ना मां मां थकी पई आहां
0: न पुट ही थक ना है रत जी कमी आहे दिस त केडो न फिको थी वयो आहे तुंहिंजो चेहरो
2: छा कयां मां
0: 6 महीना थी विया आहिनि पुट तूं उमीद सां आहीं ऐं हाणे वञी तो शुरू कई आहे फौलाद जी गोरी कचू भाॼियूं खाईंदी कर पुट तोखे ख़बर आहे असां त मेवनि जूं खलूं बि खाई वेंदा हुआसीं उन्हनि सां ई त खून ठहंदो आहे इन सां न तोखे कुझु थींदो ऐं न ई ॿार खे पुट हाणे तूं मां थियण वारी आहीं पंहिंजो ख़्यालु रखणु ॿियनि खां बि वधीक ज़रूरी
1: आहे
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
4: ख़ुशख़बरी ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे
5: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
4: ख़ुशख़बरी ख़ुशख़बरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं में
5: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
5: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
4: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
6: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
6: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी
8: अवां चाहियो था अवां जे घरन जो छितियूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
8: जी हा, 3135525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: खान अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मेरा बेटा है महमूद और मुमताज का कोई सॉन्ग सुनाओ जनाब। हमारे साथ है इनाम जमाली फ्रॉम बच्चल शामयानी सेक्टर, तो हमारे साथ हैं इस वक्त इनाम खान जमाली, कहते हैं मेरा बेटा महमूद भी आपको सुन रहा है। थैंक यू सो मच महमूद बेटा, जीव हजारों साल और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। और इनाम जमाली साहब, मैं आपको गाना जरूर सुनाऊंगा, लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो हेलो, कौन हमारे साथ मौजूद है जनाब? नंबर डायल करना बंद कर दें, आपकी कॉल लग गई है। कौन हमारे साथ है जी? मुझे नहीं लगता कि इनको मेरी आवाज आ रही है, शायद इनके कॉल में कुछ डिस्टर्बेंस है, पर कोई बात नहीं है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल, ये कट करनी पड़ी, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि कोई कॉलर थे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम उस्ताद भाई, क्या हाल है?
0: ठीक ठाक मेरे प्यारे से भाई, कौन हमारे साथ?
1: अली हसन।
0: अली हसन बाबू,
1: अली हसन बाबू,
0: क्या हाल है अली हसन भाई? ठीक ठाक है आप?
1: बस शुक्र भाई,
0: हाँ फर्स्ट क्लास जिंदगानी किए थे हले ताजी अली हसन बाबू साहब।
1: बस शुक्र जिंदगानी भी सही थी हले, बस शुक्र सुठी गाल
0: है। बिल्कुल शुक्र हर हाल में शुक्र अदा करण खपे, छो त असांखे शुक्र गुजारी वारी आदत पढ़ाइण घुर्जे, न त हर माण्हू अॼुकल्ह तकरीबन ना शुक्र थी चुको आहे, केतिरो बि कमाईंदो आहे, केतिरो बि फैसिलिटी न आहे, वरी बि चवंदो आहे कुझु न आहे असां वटि, कुझु न आहे। अगरि असां अलाह खे शुक्र अदा कंदासीं त अलाह असांखे वधीक ॾींदो, गंज ॾींदो।
1: इहो तकरीबन ख़बर साहब प्रोग्राम कंदो त मां चयो ख़बर साहब इहो टॉपिक खणी अचो त माण्हू शुक्र कोन कंदा आहिनि। बाबर साहब ॻाल्हायो
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुठी ॻाल्हि आहे न त माण्हू खे हर टाइम हर वक़्तु शुक्र अदा करणु खपे, छो त अगरि असां साह वठूं था, अगरि असां चिरूं पूरूं था, त इहा अलाह सां शुक्र अच्छा मौला मेरा बि घर होवे। ओके कंहिंजे नाले था करणु चाहियो, कंहिंखे सलाम ॾियणु चाहियो था?
1: कुर्बान अब्दुल्ला,
0: थैंक यू सो मच तव्हां शिरकत कई प्रोग्राम में, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो अली हसन बाबू साहब। थैंक यू। हमारे साथ है जनाब अली हसन बाबू, हमारे रेगुलर लिसनर रेगुलर कॉलर, और जनाब अब देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, अदा कहरा
0: ठीक ठाक सफा चाट चंगा भला के नालो ताजो अदा बुधायो, किथा कॉल कई आ?
1: सदरो जतई गला कोसी का पर खंबा
0: सदरो, क्या छाल ठीक ठाक अदा सदरो?
1: खैर तो मेहरबानी था जो खैरा तक
0: सही पर फर्स्ट क्लास, केड़े शहर में कॉल कई आ ता?
1: साईं रिगपुर मा।
0: अच्छा ड्रिगपुर मा, ड्रिगपुर का क्या?
1: ड्रिगपुर जे जो कॉल फन कोटारो करोपुर लाड़े खाए ता ड्रिगपुर साईं।
0: अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ड्रिगपुर वाला सब केड़े हालन में आइन? हाँ तव्हांजा कम कार कीअं था
1: हलनि?
0: हा गर्मी त आया था, गर्मी में कुझु थधा थधा शरबत पियो, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पियो, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स पियो, मज़ो अची वञे जीअं।
1: बिल्कुलु बिल्कुलु,
0: हा ज़बरदस्त लस्सी ठाहे पियो, मिठी बि ऐं नमकीन बि। हा जबरदस्त जबरदस्त, छो त ॻोठनि में त लस्सी हूंदी आहे न जाम, असांखे त लस्सी पीअण लाइ बाबा घंटा घर वञिणो पवंदो आहे, कॾहिं म्यानी रोड वञिणो पवंदो आहे मिठी लस्सी लाइ।
1: जी जी बिल्कुलु।
0: अच्छा इहो ॿुधायो, मां हाणे मनकबत तव्हांजे लाइ हलायां थो, मौला मेरा बि घर होवे, कंहिंजे नाले कोई पैगाम ॾियणु चाहियो था? जी जी जी
1: जी
0: ठीक ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सदोरो भाई, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो।
1: जलाल चांडियो ॿुधायो असांखे।
0: ओके हिन मनकत भत जे बाद इनशाला जलाल चांडियो हलाईंदोमांव।
1: हा पर इहो जलाल अॼु रोज़ सिलेंडर बस खे असां महबूबा सां मिलंदो।
0: कहिड़ो अलाह अकबर, वॾो ज़ुल्म कयो अथव। मूंखे गाए ॿुधायो, गाए ॿुधायो थोरो।
1: रोक क्लीनर बस खे असां महबूब सां मिलणो, भले हिन
0: अच्छा मां इहो ॾिसां, अगरि मिली वियो त ज़रूरु हलंदा कैलेंडर खे बि ऐं बस खे बि।
1: हा बिल्कुलु बिल्कुलु,
0: लाहींदासीं महबूब खे, लाहींदासीं आशिकनि खे, लाहींदासीं बस मां। अच्छा भला कोन लाहींदासीं, बस खे हलण ॾींदासीं, ठीकु आहे?
1: ठीक आहे,
0: हाज़िर हाज़िर साईं हाज़िर। बिल्कुल जनाब अस हर कॉल अटेंड कर पर कभी कभी मिस भी थी है पर कोई गाल थैंक यू सदोरो भाई पांजो खास ख्याल रखो इंशाल्लाह रोज इंदा कियो थैंक यू सो मच थैंक यू मेहरबानी बिल्कुल जनाब हमारे साथ बहुत प्यारे से सदोरो भाई की फरमाइश पे बड़ा प्यारा सा गाना उन्होंने गाया कैलेंडर रोक तो बस के भाई जलाल चांडियो इनका गाना भी हम जरूर चलाएंगे बहुत मजे का गाना लग रहा है मैंने कभी सुना नहीं है लेकिन आज सुनूंगा तो पता चल जाएगा कि कितना अच्छा गाना है आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पे लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं हमारे साथ लाइन शाइन पर कौन आ चुके हैं जनाब और कौन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम असलाम कैसा आप बेड़ो बाप बढ़िया कई खचरी हुई
1: हमरा
0: सा मानू बिड़े बस
1: ना वाले दिसना ओ यो माना बेकर तो आए
0: चाहे
1: बेकर तो आए
0: बेगर्ज मना
1: अच्छा
0: ठीक ठाक हनी सॉरी रफीक जो तो सभी सा मौजूद आई एम श्योर हाँ रफीक हाँ रफीक बुधायो ठीक ठाक आयो मजे में आयो अल्लाह असके भी रेत असा भी खाऊ था असा क्या घुरा था भला अल्लाह सभी के
1: बाबा
0: हाँ ना बिल्कुल तुम ये बुधा तो गर्मा गर्मी किए तेल कोई लस्सी वसी पियो था थदो खीर करे कोई कच्ची लस्सी पियो था या ये बस घुमो था
1: अल्हम्दुलिल्लाह यार वाज गाल के लस्सी दी गाल के दी था मतलब लस्सी पियो दा सिबरी करे
0: हां हां
1: इतने देखो वाली लस्सी जो आने शाम लस्सी भी स्टार्ट किया है लोकल बोर्ड में कसम आज ना आज शाम अच न
0: अच्छा लोकल बोर्ड हाँ मैं एडो पंथ कर लस्सी पीना चाहा मू पान करी दे भी वो बस अस
1: इनशाला
0: इनशाला आई विल ट्राई बिल्कुल अचान की कोशिश कदमा यो बुधा रफीक त फैमिली डे अज मल्हायूं था माना अज खानदान जो आलमी डी मल्हायूं था त खानदान में कहिड़ी शयूं आहिनि जेका असांखे गॾु कंदियूं आहिनि ऐं कहिड़ी शयूं अहिड़ियूं हूंदा आहिनि जेका असांखे धार कंदियूं आहिनि पाण
1: मतलब जो मानो नंडी दिल जो मालिक हूँ नंडी नंडी गाल दिल से वो
0: बिल्कुल दिल वो होजन खपे
1: दिल वो होजन खपे छो जो आए तो खानदान एक नंडी नंडी गाल दिल से वी कर एक बे का अलग थो कड़ो यार
0: बर्दाश्त जो मादो भी वो होजन घुर्जे
1: बिल्कुल मां जेको बर्दाश्त कंदो उहो ई कामयाब थींदो
0: हाँ ऐं प्यार भी मोहब्बत भी हुजणु खपे
1: जिंदगी समझ टे ॾींहं आहे
0: हाँ हाँ बिल्कुल
1: टे ॾींहं हिकु ॿिए खां अलॻि गुज़ारियूं हुते त हूंदासीं अलॻि हिते त अलॻि न
0: उते त वरी असां भेण भाउर जेका हूंदा आहिनि इते ई इन दुनिया में मिलंदासीं उन दुनिया में कोई भेण भाउ कंहिं सां बि कोन मिलंदो
1: न मिलंदो त पोइ माण्हू सिर्फ़ धार छा पोइ जॾहिं धार अचनि था एक्स्ट्रा वधनि था जो माण्हू हिक ॿिए सां ॻाल्हाए थो ॿुधाए थो तकलीफ़ पुछे थो
0: बिल्कुलु
1: पोइ नफ़रत इलाही वधनि थो मां चवंदो आहियां जेको आहे हिन ॻाल्हि खे घटि तरजी ॾींदो आहियां मां चवंदो आहियां जेको आहे
0: नफ़रत खे नफ़रत हिक ॿिए जो ॻाल्हि जेको आहे न
1: बिल्कुल बर्दाश्त कयो ऐं मतिलबु दिलि ते ॻाल्हि न वठो अगरि नंढी ॻाल्हि तव्हां सोचींदव न
0: बिल्कुलु
1: सोचींदव त वॾी थी वेंदी
0: बिल्कुलु एक्ज़ेक्टली अच्छा रफ़ीक मां गानो थो हलायां हाणे हिकु सदोरो भाई फरमाइश कई आहे जलाल चांडे जी त जेको आहे गानो हलायो कैलेंडर रोक तू बस खे जलाल चांडियो हाणे हिन बस खे रोकियूं था थोरी देरि में तव्हां कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो हिनखे
1: बस खे तूं रोक न रोक असांखे पंहिंजो पसंदि ॿुधायो
0: अलाह अकबर वरी कहिड़ो
1: समन जो
0: कहिड़ो
1: दिलनि जा मालिक मौला
0: जय हाणे त मां उहो हलाईंदुमि मन कबत हलाईंदुमि मौला मेरा बि घर हुओ हिन जे बाद असां जलाल हलाईंदासीं शुक्र आहे यादि अची वियो अली हसन बाबू
1: ओके
0: पारत बि हलाईंदासीं कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो
1: सभिनी दोस्तनि जे नाले ऐं अब्दुल नारे जो
0: सही
1: हैदर नारे जो अब्दुल भाई जतोई ऐं जेके दोस्त ॿुधनि था जिते तव्हांजो आवाज़ वञे थो
0: जी
1: ऐं सूतली बि ॿुधे पई मुंहिंजे ख़्याल में
0: सूतली अञा थुलो न थियो आहे सूतली खीर बि प्यारे भई खारेसि
1: न खीर नथो खाए न पाकपोड़ा खाए थो
0: अच्छा पाक तरी त पोइ सूतली आहे ग़रीब ठीकु आहे दादा थैंक यू रफ़ीक भाउ
1: इहो गानो ज़रूरु
0: हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु ओके थैंक यू सो मच हमारे साथ रफीक और जनाब हम सदोरो भाई की फरमाइश पे नहीं सदोरो भाई ने नहीं कहा था अली हसन भाबो ने कहा था हमें ये मन का बत चलाएं तो ये मन का बत जो है अली हसन भाबो के लिए

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजे, बसि इहा ॻाल्हि कम ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर माकली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिजिशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
3: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: जीबी पर मोबाइल में
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अनमोल, आपने वाकई बहुत अनमोल बातें की है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताओ कि जो गाना प्ले करने लगा हूँ किसके नाम करना चाहते हैं
0: आप? मुझे जलाल चांडू पसंद
1: नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप जलाल चांडू सुने, बड़ा मजा आता है जलाल चांडू साहब को सुनने का।
0: अच्छा तो फिर मैं
1: आज आज जरूर सुनिएगा वॉल्यूम खोल के।
0: चलो आज आप
1: जी जी
0: अभी जो आप
1: जी जी
0: दूसरे की गलतियों को माफ करेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो फिल्म नहीं होगी। और भरोसे से करते हैं, भरोसे रखिए, रिस्पेक्ट ना करें,
1: एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात की आपने कि भरोसा करें, एक दूसरे पर एतमाद करें, बर्दाश्त का मादा रखें और कभी किसी को हर्ट ना करें।
0: कभी किसी को दुख ना पहुंचाएं,
1: दुख ना पहुंचाएं,
0: दुख
1: पहुंचाएंगे
0: तो आपको भी।
1: चंदन आए तू मुखे दुखाई दे, रब तुखे दुखाई दो।
0: जी जी
1: चले ठीक है, थैंक यू अनमोल बहन अपना।

0: సరే ఖ్యాలకిగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ कौन सा वाला शो जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था अच्छा डेली शो करो डेली शो मैं बस जैसे ही फ्री होता हूँ ना तो फिर मैं डेली शो इंशाल्लाह जरूर करूंगा अभी मुझे कुछ मसरूफियात हैं लाइफ में तो मैं जैसे ही होगा ना मुझे फारिग वक्त इंशाल्लाह ताला आपके लिए डेली शो रोज करूंगा
1: ठीक है
0: हाँ मुनज़्ज़ा हमारे साथ होती शो करती थी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली थैंक यू अनमोल बहन थैंक यू सो मच हमारे साथ ही बहुत प्यारी सी अनमोल और अनमोल के बाद हम चलते हैं जनाब एक अदद कमर्शियल ब्रेक की जानिब कमर्शियल ब्रेक के बाद आप और हम साथ साथ हैं उसके बाद जलाल का गाना जरूर सुनिएगा मैं आज प्ले करके ही रहूंगा
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज
4: किसानों के आलमी दिन पर

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।